0: बरसों बाद ढूंढने निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी,

0: सुनाती। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

अपनी माँ की इकलौती बेटी और अपने स्टेप डैड की पांचवी सेंटीज की सबसे खूबसूरत लड़की।

0: अनफॉर्चुनेटली किसी डिजाइनर ने
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक इरलो पान चबा आ और

0: कल का ताला।
1: ओ मेरा हमरा संग ना जाओ ना।

गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खैके पहन बनाओ रस बहला खुल जाए बंद अकल का।